0: 715-905-840-4135 या टेक्स्ट मैसेज करो 416-450-6680 416-450-6680 या ईमेल करो sales@paradisedevelopments.com। वधेरे जानकारी लिए विजिट करो paradisedevelopments.com।
1: मैं थोड़ा अपना वकील ब्रिज मोहन।

क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी दा, मैं कहण लग्या सीगा ते बहुत ही गर्मा गर्म प्रोग्राम, पर हुण पता नहीं लगदा जी मैं प्रोग्राम गर्मा गर्म पेश कर दिता। अगी यार कड़ाके दी गर्मी है, तुसीं कहोगे नवी यार पहला 35 डिग्री सी, तुसी प्रोग्राम ही इन्ना गम गर्म करता होना है, लगता जिवें कि 50 डिग्री टैंपरेचर। सो कोई ना प्रोग्राम थोड़ा ठंडा रखते हैं, तो देखते हैं कि बनता।

0: क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी रहना 905-673-3573-3337 अपना फोन नंबर है ते रौनक लग चुकी है ने ते तुसी भी जुड़ चुके हो ते थोड़ी कॉल भी आ रही ने 5095 हेलो
1: ट्रक
0: दी पार्किंग बोल्टन च बोल्टन दे विच यार लब लेने आ कोई ना कोई सज्जन मित्र होगा जिन्ना कोल हैगी है चलो जी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच तो ट्रक पार्किंग किसी को भी है बोल्टन दस्यो जरा बाई जी उन्होंने हेल्प करिए स्टूडियो नंबर है 905

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अजुक प्रोग्राम हित छुस ब तुंद खदमत मंज हाजिर बुस रमेश मरहटा यमे प्रोग्राम होस्ट दोस्तों तुच चेतस जिसन कशीर छ दुनियास मज इवन सठा खूबसूरत मान येतिक पहाड़ जंगल येतिक दरियाव येतिक हवा येतिक बाग येतिक बाल थुंग तो येतिक खूबसूरत सेहत अफजा मकामात यम छ हर कंस पानस कुन रागिब करान ये तरफातों पे लूक यम जाय खतर कशीर यवान दपान कशीर छ मेहमान नवाजी मंज दुनियास मंज सरे फिरस्त इवन मान येतुक तहजीब येतिच कत बात ये छु लगभग मौसम भावनी रेतन आसन सठा शोभून तो लोभून दपान दुनियास मंज हसा छ स्विट्जरलैंड खोत कशीर सठा खूबसूरत इसलिए छ यत शायरों ते पन्ने पन्ने रंग अल्फाजों सहित ये कशीर रंगनमस दपान यम न कशीर हुन सर कुर तम न सब वुच कहीं तो दुनियास मंज अमी छ एक मकबूल शेरन वोनमुत अगर बर रुए फिरदोस जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त यानि अगर जमीन पेट कुन जाए जन्नत छो सा सो येत कशीर मंज येत कशीर मंज चूंकि कशीर हंस कत करान पेश बर्थ इस थो पनी कद बात जारी।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जिहड़ा सारे फोक डांसिंग कोला जिहड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जिहड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ए है कुछ जिहड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

back, दोस्तों डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नहीं हाँ शर्मा ते अस गल करा दे डुगर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वो स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल च कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियां भी करुड़ते हैं ऐड पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिहदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं ये ते स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनने की बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे दुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्सिया नाग देवता दी स्तुति च भी ए कीता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा कीता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादी च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी YouTube लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा के अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सैमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: 7997877 सोफा स्टूडियो .ca। थैंक यू जी।
1: ਪਾਜੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਤੰਦੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਾ।
2: ਹਾਈ ਗਾਇਸ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼, ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਸਵਾਦਲੇ ਤੰਦੂਰੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼।
1: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਪਾਠ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 9059562111 9054519200 ਸਰਵਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
3: 6475294 अपने बिजनेस प्रमोट करना टीम संपर्क कर सकते हो 6478352549 4 संपर्क कर सकते हो।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुर होए दयाल ते दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल ते हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो पंजाबी लहरां दे नाल। उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला दे विच वी खूबसूरत सवेर का आनंद माण रहे होंगे। पंजाबी लहर जुड़े हुए सारे परिवारों को एक बार फिर प्यार सत्कार आदाब ते प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: ट्रांस खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। इस जिला नाल बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज सारनिया टू लंडन किचर वाटर कैम्ब्रिज वुडस्टॉक तो लैके पैरिस ब्रेंटफर्ड हैमिल्टन तक, हैमिल्टन तो लैके नैगर फॉल के बॉर्डर तक और ईस्ट के जी टी एंटायर कवर करते हुए असी ईस्ट के असी कर्टिस बोवनविल हैम्पटन ओशवा क्रॉस करते कोबर्ग तक, नॉर्थ ईस्ट के असी सू ऑटवा के रस्ते लिंडसी पीटरबर्ग तक अपने रेडियो सेट से सुन रहे हो। तो मस्कोका काउंटी के सी लेक एरियाज़ के जिते सारे वेकेशन पर जा रहे समय मैनिटोलन आइलैंड तो लैके ओवन साउंड तो लैके ग्रैवनहस तक 11 और 400 हाईवेज तक दूर दुराडे के एरियाज़ रेडियो सैट से सुन रहे हो। इंटरनेट की मदद न दुनिया के किसी भी कोने सू www.am530.ca radiowazTorontoCom radiowazTorontoCom के उत्ते जाके या पंजाबी लाइन के पेज पर जाके लिसन लाइव पर क्लिक कर ले एम 530 के सारे शोज़ को सुन सकते हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं सोमवार की सवेर के उम्मीद दिन खुशकवार चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर डर नहीं है किसी का तो विरोध भी नहीं है किसी का, विरोध है जुल्म के खिलाफ, विरोध है कोई ऐसी चीज़ जो किसी लिए ठीक नहीं, पर डर किसी का नहीं है, निरपो निरवैर तो दुश्मनी तो डर जड़े ने यह दो चीज़ा कमज़ोर लोग रखते हैं। फिलहाल आप नहीं है तो आप चलेंगे अगे हूँ। नैक्सट है कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुम चलते रहोगे, यानी कि नवी चीज़ा रोज़ जिंदगी चाहगियाँ तुम उन्होंने लैके अगे चलते रहोगे। तो फिक्र फाकियां जरूर रेडियो आवाज़ के नाल चढ़ती कला वाल एक बार फिर जुड़ गए हो सोमवार की सवेर तो गल्लां बातें चलदियां रहणगियां। संतोष मेरे नाल, संतोष जी की हाल चाल है?
1: काफी कॉल आ रही काफी रेंटल बोल रहे थे और काफी जाने बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं कि हाँ जी असि अपनी प्रॉपर्टीज इदा दे दी, काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कि तुम सोल्यूशन दसोगे तो एवं खाली नहीं कर रहा घर। सो तुम सारे साड़ी टीम एक बार कॉल कर सकते हो जो थोड़ा कोई क्वेश्चन है या तो कोई रेंटल प्रॉपर्टीज है, तो साड़ी टीम का नंबर है 416-473-42-42-416-473-42-42। जी किसी भी कोई बिजनेस है साड़े को काफी कॉल आ रही है बिजनेस वाल लोग जाना चाह रहे हैं, सो तुम बिजनेस सेल लिए भी सानू कॉल कर सकते हो। जी किसी को कन्वीनियंस स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या ड्राई क्लीनिंग स्टोर है या होर भी कोई बिजनेस है तो तुम कॉल कर सकते हो सानू 416-473-42-42। अमल जी साडे कोल ब्रैम्पटन दे विच घर भी हैगा है, 4 बेडरूम का घर हैगा है और बहुत ही वधिया लोकेशन है। जे किसी कोल डाउन पेमेंट विच भी प्रॉब्लम आ रही है तो जेडे सैलर आ वो वेंडर टेक बैक दे रहे हैं, सो वो बहुत ही वधिया डील बन जाएगी। सो तुसी कॉल करना है साडी टीम नूं 416-473-42-42 416-473-42-42।

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आप पंजाबी आ गए,
3: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
4: पंजाबी आ गए होए, अगलिया ने मूवी बैन करती है जी इंडिया दे विच, ते देखो आने वाले समय दे विच की होएगा। दलजीत दोसांझ दी जिहड़ी मूवी है उस नूं बैन किया गया है, और गवर्नमेंट्स दे की रूल्स आ, की उन्हां दीआं इशू आ, इहदे बारे आपां कुछ कह नहीं सकदे। चलो एक नंबर नोट करो, एच के मूवर्स वालिआं दा 416-524-6704 ते कॉल कीती जा सकदी है। मूवर्स दे विच तुसीं मूविंग कराउणी आ, आपणीआं गड्डियां मूव कराउणीआं, समान मूव कराउणा, कैनेडा दे किसे भी पार्ट दे विचों, एडमिंटन, कैलगरी, इधर तुसीं चल जाओ जी, विनिपेग चल जाओ, ऑटवा, मॉन्ट्रियाल, जिथे भी तुहाडा कोई रिश्तेदार रहिंदा, जे तुसीं मूव हो रहे हो, एच के मूवर्स वालिआं नूं तुसीं कॉल करनी है। तुहाडीआं गड्डियां उत्थे खड़ियां, गड्डियां भी लै आणगे, क्योंकि किलोमीटर पैणे आ, थोड़े जे पैसे दे के गड्डियां इन्हां ने अपने ट्रेलर च साफ बिल्ड कराउणी गड्डियां। कई बार तुसीं हाईवे जाने आ, छोटी छोटियां वो पत्थर जे हुंदे आ, वो तुहाडे शीशे ते वजदे आ के फिर कई बार विंडशील्ड तुहाडी क्रैक हो जाती है, उस तो बचण वास्ते कोई गड्डी दे झरीट नहीं पैंदी, इन्हां दे वड्डे वड्डे ट्रेलर इन्हां दे कोल आ। जे गड्डी मूव कराउणी आ 416-524-6704, जे टोरंटो तो गड्डी कितें विनीपैग भेजनी आ, जां तुसीं कैलगरी भेजनी आ, वैनकूवर भेजनी आ, इधर ऑटवा भेजनी आ, मॉन्ट्रियल भेजनी आ, फिर भी लै जांदे आ। समान मूव करना है, ट्रक इन्हां को वड्डे वड्डे ट्रेलर लोड करके इन्हां दे बंदे डब्बिआं 'च तुसीं पैक कर दो समान, आपे चक के तुहाडे घरे छड्ड के इन्हां ने आ जाणा। 416-524-6704 ते कॉल कीती जा सकदी है। खास करके बहुत ज़्यादा समान कैलगरी एडमिंटन तो आ रहा है, बहुत परिवार कोई मूव हो रहा, कोई इधर उधर जा रहे हैं, तो तुसीं समान की जिम्मेवारी इन्हां नूं दे दिओ। 416-524-6704 ते कॉल कीती जा सकदी है। हरजीत जी, आ लाओ गीत।

0: के आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
3: एक लाइफ है जिससे लव है,
4: ये कहते मुझसे सब है,
5: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: प्यार ना दिती हुई निशानी वर्गा माखियों मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लेके रंग तहाड़े

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
2: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
3: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
2: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
3: कॉल करो 905-874-9878।
4: वे जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे, वे टिकटा दो ले ले।
5: टिकटा दो लेनिया हो या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कॉन्टैक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल, 2883 डेरी रोड ईस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-678-1200।
6: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
7: नहीं, मैं मर जा उठे क्यों होने?
6: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुने भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9999। ऑफिस

0: पचहत्तर 437-264-3175 कॉल करो तो एस्टीमेट चको तो देखो जी एनरोल करो पिछे ना रहो।
1: हाँ 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਨਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਮਿਲੀ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਮਿਲੀ ਹੋਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਫੇਲ ਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ?
0: जी हम उन्हीं कोर्सेज में डालते जहाँ पे आराम से पास हो जाएंगे, आसान से कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज में जिसमें टीचर है ही नहीं, सेल्फ स्टडी है, वो तो और भी आसान है, तभी हमारी फीस 499 हो जाती है 199 की जगह, राइट। तो आसान से ही कोर्सेज हैं, आप स्किल हासिल करें, फंडिंग हासिल करें, अपने अकाउंट में हासिल करें, बहुत लोग कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत टाइम, इसमें कुछ कैच नहीं है, कोई पेपर नहीं बन रहे आपके, तो कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कमीशन भी नहीं है,
1: हाँ,
0: तो साफ तरीके से कर रहे हैं।
1: डायरेक्ट कॉल इन्हें करो, कॉल करके थोड़े जो सवाल ने वो जरूर एक बार बैठो, सवाल अपने करो, सवालों के जवाब देने लिए बैठे हैं। सो थोड़े किस तरह के कोई भी सवाल है जरूर एक बार इन्होंने करके गलबात करो। सो नंबर एक बार फिर साझा कर दो सर,
0: 837-264-3175 437-264-3175
1: बहुत बहुत धन्यवाद। 437-264-3175 437-264-3175 ते तुसी हुणे कॉल कर सकदे जी।
0: थैंक यू।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

कि इस पाइपलाइन का जो रूट है 3300 किलोमीटर है, पूरा कोरिडोर है, यह सिर्फ तो सिर्फ इंटायरली कैनेडा के ही रहेगा। दोबारा तो गलती नहीं करांगे अमरीका दे विचों पाइपलाइन लंघा के, क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उन्होंने फिर तो किसी भी लल्लू पंजू यूएस स्टेट लीडर तो सुनना पवे, धमकियां सुननिया पैन, जिन्होंने पिछले साल दे विच तां थ्रेटन किया है कि वह यूएस दे विचों लंघ दियां कनेडियन पाइपलाइनस दियां टूटियां ही बंद कर देंगे, विल टर्न ऑफ द टैप्स, विल लीव यू ड्राई, हाई एंड ड्राई, सुक्का ही छड़ देंगे। सो ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ते अल्बर्टा प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने इस नवी पाइपलाइन नूं पिच किया है कैनेडा दे एनर्जी सिक्योरिटी नूं स्ट्रेंथन करन दे लई, नमियां ढेर सारियां वेल पेइंग जॉब्स एवरी प्रोविंस दे विच, ऑफ कोर्स अल्बर्टा, सस्कैचुआन, मैनिटोबा एंड ओंटारियो, ऑल द वे काम करने वाले लोगों की जरूरत पैनी पैनी आ वेल पेइंग जॉब्स बनाने दे लई, फॉरेन मार्केट्स ते रिलायंस घटाने दे लई, क्योंकि वध ऑयल रिफाइन किया जाऊगा इन ओंटारियो ते डोमेस्टिकली ही वरत्या जाऊगा, ते कनेडियन ऑयल दे लई नवीं मार्केट्स खोलण दे लई भी, नवे कस्टमर्स लभण दे लई भी इह हुण इन्होंने पिच किया है। सो इन्होंने प्रपोज किया है कि हरेक दिन एवरी डे वंस दिस पाइपलाइन इज अप एंड रनिंग, इफ इट्स एवर अप एंड रनिंग, तकरीबन 5 लाख तेल दियां बाल्टियां, क्रूड ऑयल दियां बैरल्स पर डे 500,000 गिनती दे विच डोमेस्टिक यूज दे लई ही मूव कीतियां जाण, सो विद इन ओनली कैनेडा यूज कीतियां जाण ते भेजियां जाण अल्बर्टा तों लैके ओंटारियो तक। पर इस पाइपलाइन की कपैसिटी नूं वधाया भी जा सकता है 8 लाख बाल्टियां पर डे तक, जिहड़े वाधू अमाउंट नूं ओह 3 लाख दे फर्क नूं शायद फॉरन मार्केट्स तक फिर वेचिया जा सकता है। ताही इस प्रपोजल तों अलावा ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने यह भी किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सब तो ज़्यादा शायद इकली ऑपोजिशन तो सस्कैचुआन के प्रीमियर स्कॉट मोट तो आनी नहीं हैगी, वह भी चाहता है कि पाइपलाइनस बनाई जाए, नैचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए जा, मुल्क की ओवरऑल तरक्की हो, बंदे का दिमाग चलता है। अल्बर्टा प्रीमियर भी ऑब्वियसली चाहती है कि एक नहीं हुण तां दो पाइपलाइन बनाई जाण। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड भी कह रहा है कि जिहड़ी अल्बर्टा लैके बीसी पाइपलाइन वो भी बननी चाहिए है, पर यह हुण अल्बर्टा लैके ओंटारियो तक भी बननी चाहिए है। इक्को ही बंदा है जो कि शायद कंफ्लिक्टेड है, जो कह लो है ऑपोजिशन दे विच है, वो है मैनिटोबा एनडीपी प्रीमियर वाब किनू, जिनू ऑफकोर्स तो अपने ही कम्यूनिटी के इंडिजनस लोगों की गल तो अपने ही प्रोविंस के लोगों की गल तो जिधर भी हवावां बदलदिया ने लैफ्ट जा राइट यस जा नो ऑन अ पाइपलाइन उधर दे वाली जाना पऊगा, जेकर वह अपना अकॉर्डिंग टू ऑल मेन स्ट्रीम सर्वेज एंड पोल्स, जेकर वह पूरे कनेडा का सब तो पसंद किया जाता प्रीमियर रहना चाहता है, रीअलैक्ट होना चाहता है, फिर तो भाई इनू तो आपदे लोगों की गल सुननी पैनी आ। पर हुण इहदे मूँह ते भी पैसे नोट सिट्टे जा रहे ने ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड दे वल्लों, एडवांस दे विच ही दस्या गया है कि जिहड़ी हुण कोई भी पोटेंशियल ऑपोजिशन इंडिजनस कम्यूनिटीज़ तों जां फिर मैनिटोबा दे लोकां तों आ सकती आ कि उहनां दे प्रोविंस दे विचों इह पाइपलाइन ना लंघे, इन एडवांस as a precaution ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ते अल्बर्टा प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने कह दिता है कि तुहाडा भी भाई फायदा होगा ते इंडिजनस लोगों का भी फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा जेकर तुसी ये पाइपलाइन लंघण दिंदे हो। इस प्रपोजल तो अलावा यह जी मेन 3300 किलोमीटर की पाइपलाइन है ऑल द वे फ्रॉम हर्डिस द अल्बर्टा टू सार्नी ओंटारियो, इस अलावा अज ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि एक अडिशनल पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की जा रही है, जिमें कि इस ऑयल पाइपलाइन बाद दे विच जमे भी सेम टाइम ते एक्सटेंड किया जाए। हुण मान लो अल्बर्टा ऑल द वे टू ओंटारियो, ये तो एक वैसट टू ईस्ट पाइपलाइन तो होनी आ, पर मे बी मैनिटोबा दे विच ये नॉर्थ तक भी जाए, कित्थे तक? मैनिटोबा दे एग्जिस्टिंग शिपिंग पोर्ट तक, जां फिर कोई नवा बनाया जाता बड़ा मैगा शिपिंग पोर्ट तक, मे बी स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ चर्चहिल तक, जिथों फिर मैनिटोबा सरकार इन एसोसीएशन विद इंडिजनस कम्यूनिटीज होर मुल्कों के मार्केट्स तक भी वह 3 लाख बाल्टियां तेल दियां नित रोज़ फिर वेच सकते हैं, उन्होंने वह मौका मिल सकता है। सो जेकर वह कंफ्लिक्टेड है मैनिटोबा द प्रीमियर, मे बी 300,000 बैरल्स ऑफ ऑयल द प्रॉफिट एवरी सिंगल डे उन्होंने अनकनफ्लिक्टेड बना दे, क्योंकि पैसा ही पैसा बोलता है, जॉब्स ही जॉब्स बोलदिया ने, यह तो बल्ले बल्ले होगी जेकर पाइपलाइन

0: के चक्कर लगाओ।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।